की जा सकती है। वज़ीर आज़म बलेंद्र शाह ने रसुआ के भुट्टीकुशी नदी में आए सैलाब के बाद बहाली नौ के लिए वसायल में कोई कसर बाकी नहीं रखने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म की माहिर प्रेस और माहिर तहकीकात दीपा दाहल ने बताया कि सैलाब मुतासर इलाकों के नुमाइंदों से आज वज़ीर आज़म काबीना दफ्तर में बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शाह ने कहा है कि बहाली नौ के लिए हुकूमत अपने पास मौजूद और अतिया दहिंगान इदारों की जानिब से फराहम करदा वसाइल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म शाह ने सैलाब मुतासर इलाकों के नुमाइंदों से आफात के वक्त मरकजी सूबाई और मकामी सतह के दरमियान फौरन यकजहती होने की बात सुनकर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि मुतासर इलाकों में जल्द अज जल्द सड़क नेटवर्क को दोबारा बहाल करने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। वज़ीर तालीम और खेल सस्मित पोखरेल ने कहा है कि तलबा असातिज़ा वालदेन और मकामी बिरादरियों से हासिल होने वाली तजावीज़ और शिकायात को बुनियाद बनाकर तालीमी निज़ाम और निसाब तालीम में इस्लाहात की जाएंगी। सुबह मदेश के दौरे के दौरान ज़िला सप्तरी के मुख्तलिफ स्कूलों में पहुँच कर तलबा असातिज़ा और वालदेन से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तलबा की जानिब से दी गई तजावीज़ और शिकायात तालीमी इस्लाहात के लिए अहम हैं और उन्होंने कहा कि मौसूल होने वाली तजावीज़ को समेट कर मौजूदा निसाब तालीम में ज़रूरी तब्दीलियां करके एक नया निसाब तैयार करने के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बाद वो 26 गते धनुषा से शुरू हुए वज़रा समेत की टीम के मदेश दौरे के अख्ताम सप्तरी के महावीर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। वज़ीर पोखरेल ने सप्तरी की तिलाठी में कौमी प्राइमरी स्कूल का मुआयना करके स्कूल की तालीम की सूरत हाल, तलबा और असातिज़ा के मसाइल और ज़रूरियात के बारे में मालूमात भी हासिल की। रसुआ के भुट्टीकुशी नदी और आसपास के इलाके में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से ज़रई शोबे को पहुँचे शदीद नुकसान का तजज़िया कौमी मंसूबाबंदी कमीशन और कौमी इंसदाद ख़तरात आफ़ात और इंतज़ामी अथॉरिटी की जानिब से तैयार करदा फौरी नुकसानात और ज़रूरियात की तखमीनी की रिपोर्ट में किया गया है। सैलाब से ख़ासतौर पर धान, तरकारी और मवेशियों पर इनके शोबे को नुमाया नुकसान पहुँचा है। तफसीलात के मुताबिक मुतासर इलाकों की मुख्तलिफ मकामी सतहों में धान की खेती वाली 1669 हेक्टर रकबा ज़मीन मुतासर हुई है। जोग्राफियाई एतबार से नुआकोट के बिदुर, लिखू और बेलकोटगढ़ी, धादिंग के बेनीघाट, रोरंग, गजूरी, सिद्धा लेक और गलछी और गोरखा के गंडकी और शहीद लखन समेत की मकामी सतहें मुतासर हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 252,445 मवेशी व परिंद मुतासर हुए हैं। मवेशी व परिंद के नुकसान की तखमीना कीमत 1,11,39,00,000 रुपये है। नेपाली कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल प्रदीप पौडेल ने पार्टी के 15वें जनरल कन्वेंशन में जोश व खरोश के साथ शिरकत करने के लिए मुल्क और बैरून ममालिक में मुकीम तमाम पार्टी के अरकान, हामियों और खैर खाहों से अपील की है। सेक्रेटरी जनरल पौडेल ने आइंदा 16 गते से 19 गते तक काठमांडू में होने वाले जनरल कन्वेंशन को पार्टी की तंजीमी और सियासी ज़िंदगी के अहम मौके के तौर पर लेते हुए तमाम सतहों के कन्वेंशन में पुरजोश शिरकत की अपील की है। पार्टी के मरकजी मजलिस आमला के अजलास के बाद नशियाती अहलकारों से बातचीत कर हुए उन्होंने बताया कि पार्टी की रुकनियत की तकसीम, तजदीद और एडिट के अमल में फ़ाल किरदार अदा करने वाले तमाम अफराद का पार्टी शुक्रिया अदा करती है। काठमांडू महानगर पालिका जलन का इलाज ज़रूरी अफराद को निशाना बनाकर 2,00,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज कराएगा। इंतहाई पिछड़े, मजलूम और लावारिस मरीजों को महानगर पालिका की तिब्बी तालीमी कमेटी की सिफारिश पर यह खिदमत फराहम की जाएगी। उसी तरह काठमांडू महानगर पालिका इलाके में रिहाइश पजीर मकामी बाशिंदों, कानून के मुताबिक नकल मकानी करके आने वाले अफराद, महानगर पालिका के अवामी नुमाइंदों, मुलाजमीन और उनके ख़ानदान के अफराद को भी ये खिदमत फराहम की जाएगी। इस खिदमत की फराहमी के लिए काठमांडू महानगर पालिका और कीर्तिपुर अस्पताल के सेहत आमा व अबिस्तकान ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा हुआ है। ज़िला शंगा के अर्जुन चौपारी गांव पालिका में घास काटने के दौरान पहाड़ी से गिरकर एक खातून की मौत हो गई है। पहाड़ी से गिरकर अर्जुन चौपारी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 सुनार महल्ला की 35 साल सबीना सुनार की मौत हुई है। आज सुबह मकामी मेलपानी पहाड़ी पर घास काटने के दौरान सुनार तकरीबन 400 मीटर नीचे गिर गई थी। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। भाद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथिक दिन मनाओल जायवला चौठ चन्द्र पर्व आँगनमे अरबा चाउरक पिठारसँ कलात्मक अर्पण बनेबाक आ अहिम पूजाक सामग्री सजेबाक आ विभिन्न परिकार सहित चन्द्रदेवके पूजा कयल जा रहल अछि। मधेसी समुदाय छठि पश्चातक महत्वपूर्ण पर्वक रूपमे चौठ चन्द्रके श्रद्धा आ उल्लासपूर्वक मनबैत आबि रहल अछि। महिलागण साँझक पूजाक लेल भिनसरसँ प्रसाद तथा परिकार बनेबामे जुटल छलीह। नया माटिक बर्तनमे जमाओल दही, केरा, स्याओ, लताम, अनार, मिठाई, खीर, पूरी, पिरिकिया, खजुरिया सहितक सामग्री तैयार कऽ ई पूजा कयल जाइत अछि। घरमे बनाओल परिकार आ स्थानीय उत्पादनके पूजामे प्राथमिकता देबाक कारणे चौठ चन्द्रमे मिथिलाक मौलिक जीवन शैली सेहो प्रतिबिम्बित हेबाक प्राज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस काफड़ी कहलनि अछि। चतुर्थीक चन्द्रकेँ खाली हाथ नहि देखबाक धार्मिक मान्यताक कारण व्रती तथा परिवारक सदस्य हाथमे फलफूल लऽ आ पकवान लऽ चन्द्र दर्शन कयल करैत छथि। खाद्यान्न, फलफूल, दही तथा मिष्ठान अग्रहक रूपमे चढ़ाकऽ चन्द्रदेवके पूजा कयलाक बाद परिवारक सदस्यगण प्रसाद ग्रहण करबाक चलन अछि। पर्वक पौराणिक कथा पर आधारित भगवान श्रीकृष्ण आ स्यमन्तक मणिक प्रसंग सेहो जोड़ल गेल अछि। स्यमन्तक मणि हरलाक बाद श्रीकृष्ण ऊपर लागल चोरीक आरोप पश्चात मणि भेटल आ ई तकर बाद हटल। ई घटना भाद्र शुक्ल चतुर्थीक दिन भेल जनविश्वास रहल अछि। श्रीकृष्ण कलंक मुक्त भेल दिनक स्मरणमे चन्द्र पूजाक परम्परा विकसित भेल मान्यता मिथिलामे रहल अछि। मिथिला मधेशमे बाराक जितपुरमे गणेश चतुर्थी महोत्सव भऽ रहल अछि। 280 किलो तौलक विशाल लड्डू आकर्षणक केन्द्र बनवासन सप्ताहव्यापी गणेश चतुर्थी पूजा तथा महोत्सव शुरू भेल अछि। एकटा हाथी, 5 घोड़ा, बाजा छाजा सहित हजारों भक्तजन सब सहित निकालल गेल शोभायात्रा जितपुर परिक्रमा कयने छल। श्री सिद्धि विनायक पूजा समिति जितपुरक आयोजनमे भऽ रहल गणेश चतुर्थी पूजा 4 धरि चलबाक आयोजक मूल समिति अध्यक्ष श्रीराम साह कानू जानकारी देलनि। एहि वर्ष महोत्सवक प्रमुख आकर्षणके रूपमे 280 किलो विशाल लड्डू तैयार कयल रहल अछि। हरेक दिन पूजा तथा आरती सम्पन्न भेलाक बाद महोत्सव अवधि भरि दैनिक 50 किलो लड्डू भक्तजन तथा दर्शनार्थीके प्रसादक रूपमे वितरण कयल जयबाक अध्यक्ष कानू बतौलनि। धार्मिक कार्यक्रमक सङ्गे महोत्सवमे हरेक दिन भजन कीर्तन सञ्चालन कयल जायत आ साँझ तथा रातिक समयमे विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत कयल जयबाक समितिक उपाध्यक्ष जयसागर जानकारी देलनि। जितपुरमे विगत 19 वर्षसँ गणेश चतुर्थीक अवसर पर गणेश भगवानक पूजा तथा महोत्सव आयोजन होइत आयल श्री सिद्धि विनायक पूजा समिति जनौलक अछि। नेवार समुदाय मौलिक तथा सांस्कृतिक पर्वक रूपमे भगवान गणेश विशेष पूजा अर्चनक आइ आ चथा पर मनाओल जा रहल अछि। एहि समुदायमे घर, आँगन, कौशी तथा पूजा स्थान सफाक परिवारक सदस्यगण एकहि ठाममे बैसि कऽ विधिपूर्वक पूजा अर्चना कऽ ई पर्व मनेबाक चलन अछि। एहि पूजामे गणेशके विभिन्न प्रकारक फल फूल, तरकारी, अन्न तथा गड़ा गुड़ी चढ़ेबाक ई चलन रहल अछि। पूजाक लेल आदक गाछ, स्याओ, मौसम आ लताम, खीरा, मुरई, मकई, भटमास, चना, गहूँम, केराव, आड़ूक बीज आ कदीमाक बीज सहित सामग्री रखबाक चलन अछि। पूजाक सन्दर्भमे घरमे उपलब्ध विभिन्न कृषि उपज तथा फल फूलके पूजा सामग्रीक रूपमे प्रयोग कयल जाइत अछि। चथा पर्वमे प्रयोग कयल जायवला फल फूल, अन्न तथा एहिमे रहल विभिन्न तरहक गेड़ा गुड़ी अर्थात मटर, केराव सहित सामग्री सब मिक्स भेल आ कृषि, प्रकृति आ मानव जनजीवन बीचके सम्बन्धके झलकेबासन जनविश्वास रहल अछि। वर्षभरि प्राप्त होयबाक नया कृषि उत्पादन तथा प्राकृतिक उपज प्रति सम्मान आ कृतज्ञता व्यक्त करबाक उद्देश्यसँ चथा पूजा करबाक चलन रहल इन्द्रेश्वर महादेव पुजारी श्री प्रसाद जंगम बतौलनि। चथा पर्वसँ चन्द्रमे सम्बन्धी धार्मिक विश्वास जुड़ल गेल जनविश्वास अछि। आजुक दिन चाँद नहि देखबाक जनविश्वास रहल अछि। चन्द्रमे देखलाक बाद झूठ आरोप वा अपवाद लग सकबाक कारणे परम्परागत मान्यता रहल पूजा कयलाक बाद मात्र आकाश दिस देखबाक चलन अछि।
भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन में मनाओल जाए वाला तीज पर्व आई देवादिदेव महादेव के विधिपूर्वक पूजा अर्चना कैल जा रहा है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में व्रत बैस का शिव पार्वतिक पूजा उपासना कैला पर पारिवारिक सुख शांति आ कल्याणक प्राप्ति हवाक धार्मिक विश्वास है। सतयुग में हिमालय पुत्री पार्वती बागमती तट स्थित गौरी घाट में बैस तपस्या का श्री महादेव पति पैबाक प्रदान पावल विश्वास में ई व्रत शुरू भेल पौराणिक मान्यता है। संस्कृत भाषा का हरित आ आलिका दूटा शब्द मिलकर हरितालिका शब्द बनल है, जैमे हरित शब्दक अर्थ हरण कैल गेल आ आलिका शब्दक अर्थ साथी होइत अछि। सतयुग में आजुक दिन निराहार व्रत बैस पार्वती महादेव स्वामी पावल आजुक दिन में व्रत बैसला पर मनोकामना पूरा हेबाक विश्वास अछि, मुदा एकर अर्थ सब नारी निराहार व्रत बैसबाक चाही से नहि रहल। धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डॉक्टर देवमणि भट्टराय के कथन रहल अछि, निराहार जलाहार आ फलाहार का व्रतक तीन तरहक होइत अछि। सकवला निराहार आ नहि सकवला जलाहार फलाहार कह सकबाक आ ई फलाहार व्रत करब उत्तम होइत अछि ओ कहलनि। एहि अवसर पर प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह हरितालिका तीजक शुभकामना देलनि अछि। आइ सामाजिक संजाल मार्फत प्रधानमंत्री शाह सम्पूर्ण माता दीदी बहिन सबमे हरितालिका तीजक हार्दिक शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह रसुआक भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ पश्चातक पुनर्स्थापनक लेल स्रोतक कोनो कमी नहि होमय देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रक जनप्रतिनिधि संग आइ प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में छलफल करैत प्रधानमंत्री शाह पुनर्स्थापनक लेल सरकार स्वयं संग भेल तथा दात्री निकाय उपलब्ध कराओल स्रोत साधन प्रयोग करबा सन तैयारी कर रहल। प्रधानमंत्री प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल जानकारी दलन। ओ बाढ़ प्रभावित स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि संग आजुक छलफल हुनक सभक मनोबल उच्च रखबाक लेल सहयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। छलफल के क्रम में प्रधानमंत्री शाह प्रभावित क्षेत्रक जनप्रतिनिधि सँ विपद के समय संग प्रदेश आ स्थानीय तह बीचक तत्काल समन्वय भेल बात सुनब पैला पर खुशी लागल बतौलनि। ओ जनप्रतिनिधि के लक्ष्य करैत कहलनि एहिसँ पहिने संग प्रदेश आ स्थानीय तह बीच समन्वय नहि होइत छल से सुनैत छलहुँ, मुदा एहि विपद मे हमसब एकै ठाम छी मिलकर काज करी। प्रधानमंत्री शाह सरकार प्रभावित क्षेत्र में यथाशक्य जल्दी सड़क संजाल पुनर्स्थापना करवा सन निरंतर काज करहल उल्लेख कयलनि। ओ सड़क संजाल संचालन में अयला पर प्रभावित पूर्वत अवस्था दिस स्वतः स्फूर्त वापस भऽ सकबाक आ सहज हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह बाल बालिका में कयल जाय वाला लगानी वास्तव में राष्ट्रक सुखद भविष्यक लेल भेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय बाल दिवस 2083 के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करैत प्रधानमंत्री शाह देश भीतर तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली बाल बालिका में सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य सफलता बाल मैत्री वातावरण उत्कृष्ट भविष्यक हार्दिक शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। एहि वर्ष बालापन के रक्षा भविष्यक सुरक्षा नामक राष्ट्र नाराक संग ई दिवस मनाओल जा रहल अछि। एहि वर्षक नारा सँ बाल बालिकाक वर्तमान सुरक्षित आ अधिकार सम्पन्न बनेला पर मात्र राष्ट्रक समृद्धि भविष्य निर्माण कऽ सकैत अछि, एहि गहन सत्य के जोर देल गेल प्रधानमंत्री शाह उल्लेख कयलनि। नेपालक संविधानक धारा 39 बाल बालिकाक हक राष्ट्रीय बाल बालिकाक नीति 2080 आ बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 मौलिक हक तथा कानूनी अधिकारक रूप में सुदृढ़ ढंग सँ सुनिश्चित कयल प्रधानमंत्री शाह बतौलनि। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल सप्तरीक राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालक स्थलगत निरीक्षण कयलनि अछि। सप्तरीक बबीता कुमारी पासवान अस्पतालक गेट में प्रसूति करय पड़ल, हालहि घटना संबंध में जानकारी लेबाक लेल मंत्री पोखरेल अस्पताल पहुँचल छथि। ओ उपचारत पासवान सँ भेंट कऽ माता आ नवजात शिशुक स्वास्थ्य अवस्था संबंध में जानकारी लेलनि। अस्पताल प्रशासन के अनुसार माता आ बच्चा दुनूक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अछि। पासवान के बेड नंबर 22 में उपचार तथा सेहार भऽ रहल अछि। मंत्री पोखरेल अस्पतालक सेवा प्रवाह पूर्वाधार तथा जनशक्तिक अवस्था संबंध में जानकारी लेने छलथि। अस्पतालक सेवा विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लेल आवश्यक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाक व्यवस्थापन के विषय में पहल करबाक ओ बतौलनि। चंदपुर नगरपालिकाक दक्षिण क्षेत्र में पहिल बेर एक सप्ताह से पशु में अज्ञात रोगक समस्या देखल गेलाक बाद किसान चिंतित बनल अछि। रोगक कारण गाय मरय लगलाक बाद स्थानीय किसान सब तत्काल पशु स्वास्थ्य परीक्षण कर रोगक पहचान आ नियंत्रण करबाक मांग कयलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। पुनर्वास के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने देने की जताई प्रतिबद्धता। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को आश्विन के भीतर ही संचालित करने की तैयारी। कृष्णभीर में पृथ्वी राजमार्ग की ग्रेवलिंग शुरू। आश्विन एक से यातायात खोलने की तैयारी। धनुषा के हंसपुर के 365 परिवारों को जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र किए गए वितरित। और दक्षिण अफ्रीका में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद पुनर्वास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित तटीय क्षेत्रों में दोबारा बस्ती बसाना संभव नहीं है, इसलिए नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर बस्ती स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सड़क संपर्क विस्तार, लापता लोगों की तलाश, संभावित महामारी की रोकथाम और होल्डिंग सेंटरों में रह रहे लोगों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने की मांग की। बैठक में पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को आश्विन के भीतर संचालित करने के लक्ष्य के साथ काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक सड़क तुइन और झलोंगे पुलों की व्यवस्था को भी गति दी जा रही है। बैठक में गृह मंत्री सुधन गुरुंग, सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा और प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युतम लामिछा ने भी शामिल हुए। भोटेकोशी बाढ़ के बाद रसुवा की जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों और मलबे में लापता लोगों की तलाश जारी है। चीनी, कोरियाई और संयुक्त अरब अमीरात की टीमें लौट चुकी हैं, जबकि नेपाली सेना के साथ भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टीमें विभिन्न परियोजनाओं में खोज एवं बचाव अभियान चला रही हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार चिली में जलविद्युत परियोजना की सुरंग में नेपाली सेना और भारतीय टीम के 24 सदस्य करीब 70 मीटर मलबा हटाकर तलाश कर रहे हैं। अपर त्रिशूली 1, लांगटंग, त्रिशूली 3A, त्रिशूली 3B और रसुवा गठित जलविद्युत परियोजनाओं में भी नेपाली सेना और विदेशी विशेषज्ञों की टीमें अभियान में जुटी हैं। सुरंगों में पानी, मिट्टी और बड़े चट्टानों के कारण तलाश चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। वहीं सैफरू बेसी, टिमुरे, मैलुंग, वित्रावती और देवीघाट जैसे प्रभावित क्षेत्रों में मलबे में भी पुलिस, स्थानीय सरकार, प्रशासन और परिजनों की संयुक्त टीम बनाकर खोज एवं बचाव अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। बाढ़ के कारण जलभराव से क्षतिग्रस्त धादिंग का जहरे सबस्टेशन मरम्मत के बाद फिर से संचालन में आ गया है। 10 भाद्र को आई भोटेकोशी बाढ़ के कारण जहरे खेत स्थित सबस्टेशन में करीब 10 फीट तक गाद युक्त पानी जमा हो गया था, जिससे विद्युत उपकरणों और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा था। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने जनशक्ति, उपकरण और आवश्यक सामग्री जुटाकर तेजी से मरम्मत और पुनर्स्थापना का काम किया। प्राधिकरण के अनुसार 28 भाद्र को दोपहर 2 बजे से सबस्टेशन को फिर से संचालित किया गया है। सबस्टेशन के संचालन में आने के बाद गजरी बाजार आदमघाट फीडर के 22 किलो क्षेत्र तथा पीड़ा फीडर के किरानचोक मिलनटार समेत प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत सेवा धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अनुसार फिलहाल कोष में कुल 13,68,73,54,606 रुपए जमा हैं। इनमें से 9 वाणिज्यिक बैंकों में 10,08,43,08,517 रुपए और 2 वाणिज्यिक बैंकों में 2,36,12,596 अमेरिकी डॉलर जमा हैं। इससे पहले कोष से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 अरब रुपए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को जारी किए जा चुके हैं। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में नया ट्रैक बनाने के साथ नाले निर्माण और ग्रेवलिंग का काम शुरू हो गया है। सड़क धंसने के 15 दिन के भीतर नया ट्रैक तैयार कर ये काम शुरू किया गया है। नागढुंगा मुगलिन सड़क परियोजना के पश्चिमी खंड के सूचना अधिकारी सचेंद्र मिश्र के अनुसार 14 भाद्र की बाढ़ में सड़क धंसने से यातायात ठप हो गया था। अब आश्विन 1 से यातायात फिर से संचालित करने के लक्ष्य के साथ काम तेजी से किया जा रहा है। करीब 100 मीटर सड़क धंसने के बाद प्रभावित हिस्से को जोड़ने के लिए करीब 300 मीटर लंबा नया ट्रैक बनाया गया है। सड़क विभाग और तकनीकी टीम के अध्ययन के आधार पर पहाड़ी की ओर करीब 30 मीटर ऊंचाई से चट्टान काटकर नया मार्ग बनाया गया है। वर्तमान में पर्याप्त जनशक्ति और उपकरण लगाकर काम जारी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ।
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
1: भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट अझै जीवन्त।
2: SG भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट।
2: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
1: सेवा सुचारु गर्न आफ्नो फोनमा *444 हैश डायल गर्नुहोस्। 4G भोल्टे
3: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाने वाला हरितालिका तीज पर्व आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि तीज के दिन व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा और उपासना करने से पारिवारिक सुख शांति और कल्याण प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। हालांकि सामाजिक रूप से महिलाएं पति की दीर्घायु तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखने की परंपरा का अधिक पालन करती हैं। वहीं मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत तराई मधेश के विभिन्न जिलों में आज चौरचंद्र यानी चौरचंद पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष हरितालिका तीज भी आज ही पड़ने के कारण मधेश की महिलाएं दोनों पर्व एक साथ मना रही हैं। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाए जाने वाले चौरचंद्र पर्व में महिलाएं दिन भर निराहार व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद फल फूल तथा विभिन्न पकवानों के साथ चंद्रमा और गणेश को अर्घ्य देती हैं। दही खीर पूरी ठेकुआ आदि पकवान तैयार करके पूजा करने की परंपरा है। वहीं नेवार समुदाय ने अपने मौलिक और सांस्कृतिक पर्व के रूप में भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना कर आज चथा पर्व मनाया। इस अवसर पर घर आंगन छत और पूजा स्थल की सफाई कर परिवार के सभी सदस्य एक साथ विधिपूर्वक पूजा करते हैं। पूजा के दौरान भगवान गणेश को विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां अनाज और दालें चढ़ाने की परंपरा है। लंबे समय से जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होने से परेशान धनुषा के परिवारों को अब जमीन का प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। नाप नक्शा पूरा होने के बावजूद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी न हो पाने वाली गांव ब्लॉक और स्ववासी प्रकृति की जमीनों की समस्या का समाधान करते हुए धनुषा नापी कार्यालय ने प्रमाण पत्र वितरण जारी रखा है। इसी अभियान के तहत हंसपुर नगरपालिका 5 साबिक सुगा निकास गांव विकास समिति के 365 परिवारों को जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया। इस क्षेत्र का नाप नक्शा वर्ष 2015 में ही पूरा हो गया था। नापी कार्यालय के अनुसार प्रमाण पत्र मिलने के बाद वर्षों से जमीन का स्वामित्व स्थापित नहीं कर पाए परिवारों को कानूनी रूप से जमीन का मालिक बनने का आधार मिला है। इससे भूमिहीनता की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद जमीन को बैंक में गिरवी रखकर ऋण लेना, उसकी खरीद बिक्री करना और राज्य को राजस्व प्राप्त करना आसान होगा। साथ ही भूमि विवादों के समाधान और भूमि कर वसूली का कानूनी आधार भी तैयार होगा। नापी कार्यालय के अनुसार अभियान के तहत अब क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका 1 और 2 साबिक रमदैया भवाड़ी के 375 परिवारों को आगामी 31 भाद्र को जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी है। भारत सरकार नेपाल सरकार को प्रतिदिन 654 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएगी। भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने आज जारी बयान में इसकी जानकारी दी। भारत के अनुसार 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक नेपाल विद्युत प्राधिकरण को रात 12 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मुजफ्फरपुर ढलकी पर 400 केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन से अधिकतम 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर 132 केवी सिंगल सर्किट लाइन से 54 मेगावाट बिजली दी जाएगी। भारत ने कहा है कि जनवरी 2027 से होने वाले बिजली निर्यात की दिसंबर 2026 में समीक्षा की जाएगी। रसवा की भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। भारत ने कठिन परिस्थिति में नेपाल की मदद करने और दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि काठमांडू में बैठकर ही पाठ्यक्रम बनाने की परंपरा को खत्म कर स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में व्यावहारिक और जीवनोपयोगी विषय शामिल करने, कौशल विकास पर जोर देने तथा विद्यालयों की भौतिक और तकनीकी सुविधाओं में सुधार की मांग की। मंत्री पोखरियाल ने कहा कि दौरे के दौरान मिले सुझावों और स्थानीय समस्याओं को आगामी शिक्षा कानून नीति और नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण में शामिल किया जाएगा। उन्होंने मध्येश में गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग और कृषि शिक्षा के विस्तार तथा कृषि कॉलेजों की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार केप टाउन से करीब 380 किलोमीटर पूर्व प्रिंस अल्बर्ट और ली गामका के बीच दो मिनी बस टैक्सियों की आमने सामने टक्कर हुई, जिसके बाद एक तीसरी गाड़ी भी उनसे टकरा गई। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वेस्टर्न केप में मिनी बस टैक्सियां सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है और इनके हादसों में अक्सर बड़ी संख्या में लोगों की जाने जाती हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। पुनर्वास के लिए संसाधनों की कमी न होने देने की जताई प्रतिबद्धता। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को आश्विन के भीतर ही संचालित करने की तैयारी शुरू। कृष्णभीर में पृथ्वी राजमार्ग के ग्रेवलिंग शुरू। आश्विन एक से यातायात खोलने की तैयारी। धनुषा के हंसपुर के 365 परिवारों को जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र किए गए वितरित। और दक्षिण अफ्रीका में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।